0: चिंद
1: मन्वंतर की उतरे चिंद
0: नित्य अगोतरंग
1: संत जना की तूर मन मांग
0: आप छोड़ बेंती करो
1: सासंग अगम सागर करो
0: हर धन के पर ले पंडार
1: नानक गुर पूरे नमस्कार
0: कुशल सहज आनंद
1: सासंग पज परमानंद
0: निवार उधारो जियो
1: गुण गोविंद अमृत रस पियो
0: चितवो नारायण
1: एक रूप जाके रंग अनेक
0: कपाल दमोदर दीन दयाल
1: दुख भंजन पूरन कृपाल
0: सिमर सिमर नाम बारंबार
1: नानक जी का ए आधार
0: उत्तम श्लोक साध के वचन
1: अमलीक लाले रतन
0: सुनत कमावत होते उधार
1: आप तरे लोके निस्तार
0: सफल जीवन सफलता का संग
1: जाके मन लागा हर रंग
0: जय जय शब्द अनाहद वाज
1: सुन सुन करे प्रभु गाजे
0: प्रगटे गोपाल महात के माथे
1: नानक उदरे तिन के साथे
0: सगल जोग सुन सर नहीं आए
1: कर कृपा प्रभु आप मिलाए
0: मिट गए बैर पै सबरे
1: अमृत नाम साध संग लैन
0: सो प्रसन्न पै गुरुदेव
1: पूर्ण होई सेवक की सेवा
0: आल जे ताल जंजाल विकार तेरे ते
1: राम नाम सुन रसना कहते
0: कर प्रसाद दया प्रभु तारी
1: नानक निभे खेप हमारी
0: की उसत करो संत मी
1: सावधान एकाग्र चित
0: सुखमनि सहज गोविंद गुण नाम
1: जिस मन बसे सो होत निधान
0: सर्व इच्छा ताकी पूर्ण होए
1: प्रधान पुरख प्रगट सर लोए
0: सब ते ऊंच पाए स्थान
1: बहुर न होवे आवन जान
0: हर तन खाट चले जन सोए
1: नानक जिसे प्राप्त होए
0: प्रेम शांत रिद्ध नाम निध
1: बुद्ध ज्ञान सर्व ते सिद्ध
0: विद्या तप जोग प्रभु ध्यान
1: ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान
0: चार पदार्थ कमल प्रगास
1: सब ते मत सगल ते उदास
0: सुंदर चतुर तत्व का वेता
1: संदर्शी

0: अच्छा अच्छा
1: और सारा इतना लाया
0: चक ले आ
1: ला ओ पहले तो सेट ठीक कर ला पर ले
0: अच्छा अच्छा
1: चल ओनू कहता ओनू कहता ओनू कहता
0: आहो

जक्षण उपजायो आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार किसी को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी सेवकन को सब गुण सुख दियो सत्रन को बाल मोह बध कियो। घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर या स्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछानै कट कट के पट पट की जानै जबज कर करा करतारा प्रजा तर तब देह पारा। जाबिया कर करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जिते बदन श्रेष्ठ सब थारै आप अपनी बूझ उचारै तुम सब ही ते रहत निरालम जानत वेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनीला नाद संभ ताका मूड़ उचारद भेदा जाको भेवन पावद वेदा। ताको कर पाहन अनमानत महामूढ़ कछ भेद न जानत। महादेव को कहत सदा सेव निरंकार का चीनत न पेव। आप अपनी बुद्ध हजीती बरणत भिन्न भिन्न तोहे तेती तुमरा लखा न जाय पसारा। केहे बिन सजा प्रथम संसारा एक रूपा नूप सरूपा रंक पयो राव कही भूपा। पंडज जे रज से तज कीनी ओत भुज खान बाहर रच दीनी। कहूं फूल राजा हो बैठा कहूं सिमट भय शंकर कैठा। सिगरी श्रेष्ठ दिखाई अचम भव आद जुगाद स्वरूप सयम पहो। अब रक्षा मेरी तुम करो सिख वर असिख संघरो। दुट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण काता। जे अस तुज तब सरणि परे तिनके दुष्ट दुखत हव मरे। पुरख जमन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्याए है ताकि काल निकट नह है। रक्षा हुई ताहि सब काला दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहि निहर हो ताके ताप तनक मह हर हो। रिद सिद्ध कर्म सब होई दुट छा छब सक न कोई।

चौपाई संबत सत्रह सहस फुण जय अर्ध सहस फुण तीन कहि जय भाद्रव सुदी अष्टमी रव बारा तीरुस्तद्रव ग्रंथ सुधारा इत श्री चरित्र उपख्याने त्रिय त्रित्रय मंत्री भूप संवादे चार सौ पांच चरित्र समापत मस्त शुभ मस्त।

जुग जुग अटल सब कोई पाखत नेतो सुर्ग बास रगबर करां सगरी पुरी समेत चाओ पाई जो एह कथा सुन अर गावे दुख पाप ते निकट न आवे बिशन भगत की ए फल होई आदबे आचुसका न कोई सम्मत सत्रह सास पचावन हाड़वदी प्रथम सुख दावन त्वा प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा भूल परी लह लिओ सुधारा दोहरा नेत्र तों के चरण तर सद्रव तीर तिरंग श्री भगवत पूर्ण की ओर अकबर कथा प्रसंग

सिमरत शास्त्र वेद सब बेद कहे हम एक न जाने श्री अस्पान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तो बखाने दोहरा।

प्रसाद। आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज स्थिति मन वजिया वादहिया राग रतन परवार परिया शब्द गावण आईया शब्दोता गावो हरि केरा मन जनी वसाया कह नानक आनंद होवा सतगुरु मैं पाया।

दर्शन प्यासी दिन सुरार चितवो अनदिन मीत खोल कपट गुर हेलिया नानक हर संग मीत खोल कपट गुर हेलिया।

फिर आपन भाणा किस निछी नीसी छंदा यार वे तैरा वे आ लालन मूह दस दसंदा लालन तै पाया

मन्नेहु गुरु केरा गावो सच्ची बाणी, कह नानक सुनहो संतो कथियो अकथ कहानी। ए मन चंचला चतुराई किन न पाया, चतुराई न पाया किनाए, तो सुन मन मेरे आ एह माया मोहनी, जिन इत भरम भुलाया माया ता मोहनी, तिना कीती जिन ठगावली पाईया। कुरबान कीता तसब टहो जिन मोह मीठा लाया, कह नानक मन चंचल चतुराई किन न पाया।

नानक मेरे शरीर का एक रथ एक रथवाहु जुग जुग फिर वटाइए ज्ञानी बुझे ताहि साजुग रा संतोख का।

जित सोह लय सदा सुख होए रहाउ। नित नित जीअड़े संभालियन देखेगा देवनहार। तेरे दान कीमत न पवै तिस दाते कौन सुमार। संबत साह लिखिया मिलकर पावो तेल। देहो सज्जन सीसड़िया ज्यों होवे साहिब स्यों मेल।

दुख पावे है। जम कौर सह ही सिर डंडा है, हर जन हर हर नाम समाने, दुख जन्म मरण पाव खंडा है। अब नासी पुरख पाया परमेश्वर, बहु सोब खंड ब्रह्मंडा है। हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे, पर रोख रोख वड वड़ा है। जन नानक नाम आधार टेक है, हर नामे ही सुख मंडा है। राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा, करो बिनंती सुनो मेर मीता, संत टहल की बेला। इहां खाट चलो हर लाहा, अगे बसन सुहेला। औद कटे दिन सरे नारे, मन गुर मिल काज सवारे। रहा यह संसार विकार संसे मह, तरयो ब्रह्म ज्ञानी, जिसे जगाए पियावे एह रस। कथ कथा तिन जानी, जो को आए सोई बिहज हो। हर गुरते मन ही बसेरा, निज घर महल पावो सुख सहजे। बाहर न होए ग

0: सब कुछ तेरे बस तेरा कर भला तेरे कर आनंद वधाई तुध कर मान महत्ता तेज अपना आप जर सर्व कला भरपूर दिस जत कता नानक दसन दास तुदे आगे बिनवता।
1: श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता तत् महत जिस राध दाई दया खेला सगल जगत चंगे आईया बुरे आईया वाचा धर्म हदूर करनी आपो अपनी केने रखू जिनी नाम ते आया रे मशक्कत का नानक ते मुखी उजले खेती सुखी ना जिनी नाम ते आया गए मशक्कत का नानक ते मुखी उजले खेती।